0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qian de mo ni xi li no le chan chan jin zu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: o ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi no chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: और ये गेम जो जितला जिप सिंह हो मछुमा के गेग मोटा तो न्यू से जेजो लंका का मांस दे देना नो येंदा ला यांस से चाव रियो होयो बचो जो जटा मुन्यो दो संग तंगा मोटा तो तो मट ताते ले गेम गने जेजो लंका दी पेंडो रे
0: रे रे तंगा ह गिंग के का शाम बत की छि इन रो तिंग मोनी ला सान रो रे
1: और रे रे रे
2: लंका
1: के तो तो हमें छाया
0: बस के छना जे पिन जे जो
1: को यो गोया पोता बाजो चिंबो मयो वेची, चामी, जेजु लांको ला, मांजर योना, यापो यो।